ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। यमन की हुकूमत मुखालिफ हूसी फोर्सेस के एक आला ओहदेदार ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका हूसियों के खिलाफ सऊदी क्यादत में फौजी मुहिम में शामिल हुआ तो फौरी और दर्दनाक जवाब दिया जाएगा। ये इंतबाह हूसियों की जानिब से सऊदी दारुलहुकूमत रियाद के बैन अलाक्वामी हवाई अड्डे पर हमले के बाद दिया गया है। हफ्ते के आखिर में होने वाले इन हमलों में 14 अफराद हलाक और 300 से ज्यादा जख्मी हुए थे। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नुकसान की वजह से सऊदी हुकाम ने हवाई अड्डे की बंदिश में 17 अक्टूबर तक तोसी कर दी है। यमन की अबूरी हुकूमत के हामी सऊदी क्यादत वाले इतिहाद ने पीर के रोज ऐलान किया कि रियाद की तरफ दागे गए एक हूसी मिजाइल को फजा में रोक लिया गया। हफ्ते के रोज नामानिगारों की जानिब से पूछे जाने पर कि आया अमरीका हूसियों के खिलाफ सऊदी अरब की फौजी मुहिम में शामिल होगा, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया, ये हो सकता है, हम इसका जायजा लेंगे। जापान की बल्कि मसनूआत साज कंपनी NEC ने मुकम्मल तौर पर मसनूई जहानत से चलने वाला एक बगैर इंसानी अमले का शोबा कायम किया है ताकि ये जांचा जा सके कि इंतजामी उमूर में इसे किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इस महकमे में सरबराह शोबा से लेकर तमाम ओहदों पर 39 AI एजेंट्स तैनात हैं जिन्हें उनके मुकरर का किरदार के मुताबिक नाम दिए गए हैं। AI कारकुनान रिपोर्टें तैयार करते हैं और मालूमात इकट्ठा करके हतमी फैसले करने वालों की मदद करते हैं। इसमें मालियात का तजिया करने के लिए माहाना फरोख्त का जायजा लेना शामिल है। वो पुराने रिकॉर्ड से ये हिसाब लगाते हैं कि ग्राहकों को अगली बार अपना सिस्टम अपडेट करने की ज़रूरत कब होगी और इसके मुताबिक वो वक्त से पहले ही ग्राहकों की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। AI अमला हर सुबह हरीफ कंपनियों से मुतालिक खबरें भी चेक करता है। ये शोबा अहदाफ पर पेशरफ्त को जांचने और मुस्तकबिल के चैलेंजों का खुलासा करने के लिए हफ्ते में एक बार आला इंतजामी इजलास मुनक़िद करता है। NEC के हुकाम का कहना है कि एक AI मुलाजिम ने नंबर दर्ज करने में गलती होने के बाद एक AI ऑफिसर ने उसका इंटरव्यू किया ताकि ऐसी गलती दोबारा होने से रोकने के इकदाम पर बात की जा सके। कंपनी के हुकाम का कहना है कि वो AI अमले के किरदार को बढ़ाना चाहते हैं और इस साल शोबे में सैकड़ों AI एजेंट्स शामिल करेंगे। मिस्र के उन स्कूलों में जापानी जबान की क्लासें शुरू हो गई हैं जिन्होंने जापानी तर्ज तालीम के तरीकों को अपनाया है। मिस्र में ऐसे सरकारी स्कूल मौजूद हैं जहां बच्चे सफाई, जमाती इजलासों, बारी बारी रोजमर्रा की जिम्मेदारियां निभाने समेत दीगर सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं जो जापानी स्कूलों में आम हैं। इस मुल्क ने तालीमी इस्लाहात के एक हिस्से के तौर पर 2018 से अब तक ऐसे 100 से ज्यादा मिस्र जापान स्कूल कायम किए हैं जिनमें नज्म जब्त और बाहमी तआवुन पर जोर दिया जाता है। कुछ वालदेन की दरख्वास्तों के बाद सितंबर में 10 स्कूलों में आजमाइशी बुनियादों पर जापानी जबान की क्लासों का आगाज हुआ। पीर को जापानी ज़राए अब्लाग को शुमाली मिस्र के शहर स्वीस के एक स्कूल में 7वीं जमात के तलबा की पढ़ाई का मुशाहिदा करने के लिए मदु किया गया। तलबा ने जापानी जबान के मिस्री उस्ताद के साथ गाने के जरिए जापानी जबान में 1 से 10 तक गिनती की मशक की। उन्होंने जापानी जबान में अपना तारुफ कराने का तरीका भी सीखा। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 13 अक्टूबर मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। इस वर्ष की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नवी पिल्लई ने द हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का दौरा कर अमरीकी प्रतिबंधों के तहत कठिनाइयों का सामना कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया है। पिल्लई 2003 से लेकर 2008 तक आईसीसी में न्यायाधीश रह चुकी हैं। सोमवार को अपने इस दौरे में उन्होंने आईसीसी अध्यक्ष अकाने तोमो को और कर्मचारियों से मुलाकात की। पिल्लई ने आईसीसी की भूमिका के महत्व पर बल देते हुए कहा कि उनकी करुणा और साहस ये सुनिश्चित करते रहेंगे कि अपराधी दंड से बच ना पाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि उसने आकाने को निशाना बनाने के बाद आईसीसी पर भी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। आकाने ने पिल्लई को बधाई देते हुए कहा, ये इस बात की अहम स्वीकारोक्ति है कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय स्थायी शांति की आधारशिला के रूप में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिल्लई ने शनिवार को एक कार्यक्रम में आईसीसी से जुड़े हालातों पर चिंता व्यक्त की थी। अमेरिका का नाम लिए बिना उन्होंने कहा था कि एक देश ने न्यायाधीशों के न्यायिक आदेशों को लेकर उन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, जो अभूतपूर्व और अस्वीकार्य है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को पत्रकारों से कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच हुए ऊर्जा संघर्ष विराम समझौते का दोनों पक्षों की ओर से उल्लंघन हुआ है। ट्रंप ने इससे पहले इस समझौते की घोषणा की थी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को समझौता करने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस बारे में बात करने पर। उन्होंने ये भी कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समझौता करना चाहते हैं और हमें जेलेंस्की को उनके साथ समझौता करने के लिए राजी करना होगा। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स ने सोमवार को कहा कि ट्रंप की संघर्ष विराम घोषणा के बावजूद रूस यूक्रेन की नागरिक ऊर्जा अवसंरचना पर लगातार भीषण हमले कर रहा है। उन्होंने कहा, रूस स्पष्ट रूप से शांतिपूर्ण प्रस्तावों या मौजूदा वार्ता सुझावों पर प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि रूस उसकी ऊर्जा अवसंरचना पर लगातार हमले कर रहा है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच ऊर्जा संघर्ष विराम की घोषणा की है। ट्रंप की घोषणा के अगले दिन सोमवार को जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अकेले उसी दिन रूस ने यूक्रेन में 6 ऊर्जा संयंत्रों पर हमला किया। जेलेंस्की ने आगे लिखा कि अगर देश संघर्ष समाप्त करने के बारे में गंभीर है तो उन्हें रूस पर अधिक दबाव डालने की आवश्यकता है। ट्रंप ने यह भी कहा था कि यूक्रेन में नया राष्ट्रपति चुनने का समय आ गया है। इसके बारे में जेलेंस्की ने रविवार को एबीसी न्यूज से कहा कि अगर रूस 60 दिनों के पूर्ण संघर्ष विराम पर सहमत हो जाता है तो यूक्रेन उस दौरान चुनाव करवा सकता है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। यमन में सरकार विरोधी हूथी गुट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने चेतावनी दी है कि गुट के खिलाफ सऊदी अरब के सैन्य अभियान में अगर अमरीका शामिल होता है तो तुरंत कड़ा जवाब दिया जाएगा। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूथी गुट के हमलों के बाद ये चेतावनी जारी की गई है। सप्ताहांत में हुए इन हमलों में 14 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए हैं। रॉयटर्स समाचार एजेंसी की खबर के अनुसार सऊदी अधिकारियों ने नुकसान के कारण हवाई अड्डे को अब 17 अक्टूबर तक बंद करने का फैसला लिया है। सोमवार को यमन की अंतरिम सरकार का समर्थन करने वाले सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने घोषणा की कि रियाद की ओर दागी गई हूथी गुट की एक मिसाइल को मार गिराया गया। पत्रकारों ने शनिवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि क्या अमरीका हूथी विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब के सैन्य अभियान में शामिल होगा, तो उन्होंने जवाब दिया, हम शायद ऐसा करें, हम इस पर विचार करेंगे। जापान की इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी NEC ने एक मानव रहित विभाग बनाया है जो पूरी तरह AI से संचालित है। इसका उद्देश्य ये अध्ययन करना है कि AI का प्रबंधन में सहायता के लिए कैसे उपयोग किया जा सकता है। विभाग के प्रमुख से लेकर कर्मचारियों तक सभी पदों पर 39 AI एजेंट काम करते हैं। AI एजेंट्स को उनकी भूमिका के आधार पर नाम दिए गए हैं। AI कर्मचारी रिपोर्ट तैयार करते हैं और जानकारी इकट्ठा करके अंतिम निर्णय लेने वालों की सहायता करते हैं। वे वित्तीय विश्लेषण के लिए मासिक बिक्री पर भी नजर रखते हैं। ग्राहकों के पिछले व्यावसायिक लेन देन के आधार पर सिस्टम अपडेट करने की टाइमिंग का अनुमान लगाकर वे ग्राहकों की जरूरतों का भी पता लगाते हैं। AI कर्मचारी हर सुबह प्रतिद्वंदी कंपनियों से जुड़ी खबरें भी देखते हैं। विभाग सप्ताह में एक बार कार्यकारी बैठक करता है ताकि कार्यों की प्रगति की जांच हो सके और भावी चुनौतियों का सारांश तैयार किया जा सके। NEC अधिकारियों का कहना है कि जब AI कर्मचारी ने संख्या दर्ज करने में गलती की, तब AI उच्चाधिकारी ने उस कर्मचारी से उपायों पर बात की ताकि ऐसी गलती दोबारा ना हो। कंपनी अधिकारियों का कहना है कि वे AI कर्मचारियों की भूमिकाओं का विस्तार करना चाहते हैं और इस वर्ष विभाग में सैकड़ों AI एजेंट काम पर रखना चाहते हैं। मिस्र के कुछ स्कूलों ने जापानी शैली की शिक्षण पद्धति अपनाई है और अब वहां जापानी भाषा की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। मिस्र में ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां बच्चे सफाई, कक्षा बैठकें, बारी बारी से दैनिक कार्य और ऐसी गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं जो जापानी स्कूलों में आम हैं। शिक्षा सुधारों के तहत मिस्र ने 2018 से 100 से अधिक ऐसे मिस्र जापान स्कूल स्थापित किए हैं जहां अनुशासन और सहयोग पर जोर दिया जाता है। कुछ अभिभावकों के अनुरोध पर सितंबर में 10 स्कूलों में प्रायोगिक तौर पर जापानी भाषा की कक्षाएं शुरू हुईं। उत्तरी मिस्र के स्वेज शहर के एक स्कूल में 7वीं कक्षा की पढ़ाई देखने के लिए सोमवार को जापानी मीडिया को आमंत्रित किया गया। छात्रों ने मिस्र की जापानी भाषा शिक्षिका के साथ गीत के माध्यम से जापानी में 1 से 10 तक गिनती सीखी। उन्होंने जापानी भाषा में अपना परिचय देना भी सीखा। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।